0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 5 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Coming up next.
1: Full disclosure.
3: City FM 89.
2: Trending today.
6: Apple's industrial design team is exploring a screenless fitness tracker band positioned below the Apple Watch SE. The potential hardware pivot follows the September 2026 launch of the Data Dance Readiness app for the Series 12 and Ultra 4. Health division head Eddie Q is pushing the stripped-down wearable to accelerate the brand's pace in the fitness category.
7: City FM 89, we're playing the song. This voice has taken away the peace. So take Mospel. क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट. मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर.
8: पाकिस्तान भर की तरह कराची में भी शौकत खानम लैब के मयारी टेस्ट और होम सैंपल कलेक्शन की सर्विस मौजूद है. मैं चाहूंगा कि आप अपने तमाम टेस्ट शौकत खानम लैब से करवाएं और शौकत खानम कराची की तकमील में अपना हिस्सा डालें. शौकत खानम लैब से टेस्ट शौकत खानम कराची की तकमील.
9: कॉफी का मूड है तो डिस्काउंट भी होना चाहिए. अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाएं अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे. टिम हॉर्टन्स, कॉफी मिस्ट्री, थर्ड कल्चर, सेकंड कप, ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान. तो सिप करें, सेव करें और एंजॉय करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
2: लॉग ऑन टू facebook.com/cityfm89

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
3: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट, मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
4: इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं और हर कदम एक नई दुनिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब कदम ही आगे न बढ़ सके तो ख्वाब थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
0: City FM 89
1: on the dial. You're listening to
5: Full Disclosure with Saba Banu Malik.
6: Welcome back to Full Disclosure. Today's playlist is really going to be like a little bit of shimmying that shoulder, a little bit of girly pop. And so I wanted to play this throwback. Here's JoJo with Baby.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 5:30 p.m.
3: City FM 89.
4: The wait is finally over. Next up, Kharia mein ho rahi hai second batch ki induction for EASA Part 147 B1 B2 training program.
5: Ab milegi aapko European Standard Training, wo bhi yahin Pakistan mein, in proud affiliation with Fly on Aero Italy, approved by Italian Civil Aviation Authority, ENAC.
6: अगर आपका ख्वाब है एयरक्राफ्ट के साथ काम करने का और बनना है इंटरनेशनल एविएशन एक्सपर्ट, देन दिस इज योर मोमेंट टू शाइन.
5: रियल एयरक्राफ्ट एक्सपीरियंस, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग और ग्लोबल करियर एक्सपीरियंस, सब कुछ एक ही प्रोग्राम में.
6: लास्ट डेट टू अप्लाई इज 4th October 2026. अभी अप्लाई करें एट www.nivt.edu.pk और वो भी 100% फ्री ऑन स्कॉलरशिप.
7: एट नेक्स्ट स्टेप ट्रेनिंग डिवीजन, वी आर नॉट जस्ट बिल्डिंग करियर्स, वी आर शेपिंग द फ्यूचर.
8: पाकिस्तान भर की तरह कराची में भी शौकत खानम लैब के मयारी टेस्ट और होम सैंपल कलेक्शन की सर्विस मौजूद है. मैं चाहूंगा कि आप अपने तमाम टेस्ट शौकत खानम लैब से करवाएं और शौकत खानम कराची की तकमील में अपना हिस्सा डालें. शौकत खानम लैब से टेस्ट, शौकत खानम कराची की तकमील.
9: कॉफी का मूड है तो डिस्काउंट भी होना चाहिए. अब इजी पैसा डेबिट कार्ड के साथ पे करें और पाए अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे. टिम हॉर्टन्स, कॉफी मिस्ट्री, थर्ड कल्चर, सेकंड कप, ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान. तो सिप करें, सेव करें और एंजॉय करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
10: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट. मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर.
11: You are listening to City FM 89.
12: We are playing your song.
13: Music, if used in the right way,

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
3: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग स्टेप स्कूल दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
4: Coffee ka mood hai? Toh discount bhi hona chahiye. Ab easy paisa debit cards ke saath pay karein aur paye up to 30% off apne favorite coffee brands pe. Tim Hortons, Coffee Mystery, Third Culture, Second Cup, Greeno and many more across Pakistan. Toh sip karein, save karein aur enjoy karein. Easy paisa digital bank. Easy wala bank.
5: Is awaaz ne chheen liya hai sukoon. Toh le aaye Mosspell. Kyunki day ho ya night, Mosspell karega ghanto fight. Mosspell. मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर
6: City FM 89
1: You're listening to
7: Full Disclosure with Saba Banu Malik
8: That was Kylie Minogue Can't Get You Out of My Head Up next here is Adela with Nicole Kidman

0: City FM 89.
1: It's 6:30 p.m. City FM 89. We're playing your song.
2: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
3: पाकिस्तान भर की तरह कराची में भी शौकत खानम लैब के मयारी टेस्ट और होम सैंपल कलेक्शन की सर्विस मौजूद है. मैं चाहूंगा कि आप अपने तमाम टेस्ट शौकत खानम लैब से करवाएं और शौकत खानम कराची की तकमील में अपना हिस्सा डालें. शौकत खानम लैब से टेस्ट, शौकत खानम कराची की तकमील.
4: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट. मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर.
5: इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं और हर कदम एक नई दुनिया की तरफ बढ़ता है. लेकिन जब कदम ही आगे न बढ़ सके तो ख्वाब थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है. तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं.
6: Hold on, special delivery coming through.
7: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
8: We're now live on WhatsApp.
9: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
8: It's as easy as 03142-898989.
7: Save our number now and WhatsApp us.
10: City FM 89, we're playing your song.
8: You're listening to
11: Full Disclosure with Saba Banu Malik.
12: That was Macklemore, Ryan Lewis Thrift Shop. Macklemore has announced three tour dates, starting October 30th of a Free Palestine tour. I am so looking forward to the lineup. I was at a karaoke party last night and all of us were trying to guess who would be there. And maybe I'm hoping I can try to make it to one because all the proceeds will not. Actually, he's not just sending it to Palestine Relief Fund. He said he's going to be spreading it across like people that are supporting Palestine. I'm really hoping there's a way to get it directly in hands, because if you don't know, Israel loves to keep funds away from Palestine because they can do that because they control the banks because they're a terror organization. All right, here is Miss Ariana Grande with Into You.

0: This time check is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
2: Coming up next.
3: Retro 89.
4: You're listening to City FM 89.
5: Trending today.
6: Apple's industrial design team is exploring a screenless fitness tracker band positioned below the Apple Watch SE. The potential hardware pivot follows the September 2026 launch of the DataDance Readiness app for the Series 12 and Ultra 4. Health division head Eddie Q is pushing the stripped-down wearable to accelerate the brand's pace in the fitness category.
7: We're playing your song.
8: Azra behen, zara baat to suno.
9: हटो पीछे भागो
10: अहमद हटो वहां से
11: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं घबराए नहीं समझदारी से काम ले सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें महकमा सेहत हुकूमत सिंध
12: पाकिस्तान भर की तरह कराची में भी शौकत खानम लैब के मयारी टेस्ट और होम सैंपल कलेक्शन की सर्विस मौजूद है मैं चाहूंगा कि आप अपने तमाम टेस्ट शौकत खानम लैब से करवाएं और शौकत खानम कराची की तकमील में अपना हिस्सा डालें शौकत खानम लैब से टेस्ट शौकत खानम कराची की तकमील
13: कॉफी का मूड है तो डिस्काउंट भी होना चाहिए अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाएं अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे टिम हॉर्टन्स कॉफी मिस्ट्री थर्ड कल्चर सेकंड कप ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान तो सिप करें सेव करें और एंजॉय करें इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
8: अजरा बहन जरा बात तो सुनो
9: हटो पीछे भागो
10: अहमद हटो वहां से
11: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं घबराए नहीं समझदारी से काम लें सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें महकमा सेहत हुकूमत सिंध
4: You're listening to City FM 89.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G।
3: अजरा बहन जरा बात तो सुनो,
4: हटो पीछे भागो।
5: अहमद हटो वहां से।
6: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
1: You're listening to
0: Retro 89 with Amir Nasir.

0: 89.9 जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
1: सिटी FM 89
2: You're listening to
3: Retro 89 with Amir Nasir.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 p.m.
3: City FM 89.
4: जहाँ पाँच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पाँच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पाँच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
3: City FM 89
1: You're listening to
0: Retro 89 with Amir Nasir
5: I love that rendition of Fool If You Think It's Over by El Kibbutz Rizzi by Chris Rea. How about Stevie Wonder with Higher Ground? And Benny Mardones came out with just this one hit but became massive into the night. And Billy Ocean's Stay the Night. Folks, stick around. I've got one last link to go on Retro 89.

0: the perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 9 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
4: Coming up next.
0: Non-stop hits.
5: City FM 89.
6: Trending today.
7: Apple's industrial design team is exploring a screenless fitness tracker band positioned below the Apple Watch SE. The potential hardware pivot follows the September 2026 launch of the Data Dance Readiness app for the Series 12 and Ultra 4. Health division head Eddie Q is pushing the stripped-down wearable to accelerate the brand's pace in the fitness category.
5: City FM 89, we're playing the song.
8: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G

0: the perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: कॉफी का मूड है तो डिस्काउंट भी होना चाहिए. अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाए अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे. टिम हॉर्टन्स, कॉफी मिस्ट्री, थर्ड कल्चर, सेकंड कप, ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान. तो सिप करें, सेव करें और एंजॉय करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
3: Follow us at CityFM89 on Facebook, Instagram,
4: Twitter,
3: Vimeo,
4: on SoundCloud.
5: Attention! The standard commute has been decommissioned.
6: Introducing a system override for your ears.
7: New energy, new perspective.
8: The same 24 hours, but a completely different vibe.
9: Join ABD as he takes over the streets.
10: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
11: your evenings just got an upgrade.
9: The Rush Hour with ABD.
8: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
11: Tune in or get left behind.
12: City FM 89, we're playing your song.
0: You're listening to
13: Non-Stop Hits.